0: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
2: You're listening to Inspire FM, your number one radio station. Inspire FM.
3: I have wisdom.

0: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शे रेडियो इंस्पायर एफएम है।
1: I have

इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।

जी ओके आपका सवाल है, मैंने बताया था अना मैं है और यहां इन्ना हम है, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ये अगर इन्नी होता तो ये मैं होता, ठीक है? जिस तरह उर्दू में है ना, मैं और मुझे और मेरी, तीनों लफ्ज किसके लिए हैं? मेरे लिए है। इसी तरह नखनू ना, वो दोनों हम के लिए हैं, और अना और नी और ई वो मेरे लिए हैं। जब इन्ना आ जाता है तो साथ में इन्ना नखनू नहीं कहते, इन्ना कहते हैं हम के लिए। अगर ये अना होता तो ये इन्ना ना होता, इन्नी होता, इन्नी होता। जी ठीक, बेशक हम। थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी होगी ग्रामर सीखने से, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, वैसे अरबी होती है, शुरू में तकलीफ होती है फिर ठीक हो जाती है। ओके अब हम बात करेंगे जुमले की साख्त के बारे में। या बुनैया अकीम अस्सलात वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। मेरे बच्चे नमाज को कायम कर, अच्छी बात की तरफ तलकीन कर, बुरे काम से रोक, और जो कुछ भी जो कुछ भी तुझे स्ट्राइक करे, जो कुछ भी तेरी तरफ आए, उस पर सब्र कर। वस्बिर अला मा असाबक इन ذلك من عزم الأمور, बेशक ये बहुत यानी अजीमत वाले कामों में से है। अजीमत अरबी में, पता नहीं उर्दू में क्या सही लफ्ज़ होगा, जो कमिटमेंट जो ज़्यादा दिखाता है ना, और हिम्मत दिखाता है, बड़ी हिम्मत वाले कामों में से। इस तरह समझने बात को, इन्ना ذلك من عزم الأمور, यानी ये कोई छोटा काम कारनामा नहीं है, इससे बहुत हिम्मत, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसी तरह आगे कह दिया लतुबलउन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारी तुम्हारे अपने मामले में बहुत सारे इम्तिहानात दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। वला तस्मउन्ना मिन अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिन अल्लज़ीना अशरकू अज़न कथीरा, और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। बहुत सारी तकलीफ़ अजियत देने वाली बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी इसकी, और तस्मउन्ना में है लाजमन सुनने को मिलेंगी, बेशक सुनने को मिलेंगी। फिर कहा वह इन तस्बिरू व तत्तकू, और अगर तुम फिर भी सब्र करो और तकवे को थामे रखो, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो फिर ये तो बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। दोबारा वही ताबीर इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा तौकीद है क्योंकि फ़ा का इजाफा किया गया है पहले से, उसमें भी एक ज़रा कलाम में ज़ोर ज़्यादा आ जाता है। और आप देखोगे पहली में कहा था जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करना, लेकिन यहाँ पर कुछ मज़ीद बात की है ना, कहा है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, तरह तरह के इम्तिहान लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कहा सब्र भी नहीं करना, सब्र के साथ क्या करना, साथ तक्वा भी थामे रखना। तो फ़ा इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ज़ोर के साथ ग्रामर के एतबार से एक तीसरी मरतबा ये ताबीर, ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया, वो तीसरा है वला मन सबरा व गफरा फ़इन ज़ालिका लमिन, और इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है। ये जो लाम है ना इन्ना ज़ालिका ला मिन अज़्मिल उमूर, इसको अरबी में लामुल तौकीद भी कहते हैं, लामुल कसम भी कहते हैं, यानी कसम है कि ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये जो तीसरी दफ़ा यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ सूरत शूरा में, इसमें ज़्यादा ज़ोर है बाकी दोनों की नस्बत। तो सवाल पैदा होता है कि इसमें ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया गया और उनमें ज़्यादा ज़ोर, और बनिस्बतन कम ज़ोर उनमें क्यों है। सब्र के दो पहलू हैं यहाँ पर, एक है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपको बर्दाश्त करना है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप जवाबी कार्रवाई करने की आपके पास अभी सलाहियत नहीं है, आपके पास वो कुव्वत नहीं है, ना आपके पास वो इख्तदार है कि आप उसकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें, आपके पास अब क्या चाह रहा है, सब्र, ठीक है। और फिर यहाँ पहली आयत में भी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए उस पर सब्र करना। अच्छा पहले इंसिडेंटली ये हमारा मजमून नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं, ख़ास क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो उर्दू में कुछ अल्फाज जो कुरान में भी आते हैं ना, हम उसका गलत मायना ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुसीबत है, मुसीबत उर्दू में कोई अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं। अरबी में असाबा सवाब से निकला है, सवाब कहते हैं जब तीर मारो और बिल्कुल सही टारगेट पे जाके लगे ना,
वो सवाब है। इसीलिए नई अरबी जबान, जदीद अरबी जबान में भी दो, जिस तरह हम कहते हैं सही और गलत, वो कहते हैं सवाब अम खता, सवाब अम खता, खता गलत के लिए और सवाब सही के लिए। इसाबा कहते हैं जब कोई चीज़ अपने टारगेट पे सही से जाके लगे, तो जब तीर सही टारगेट पे जाके लगता है तो वो मुसीब है, वो तीर मुसीब है। और बहुत सारे तीर, हर इनमें से हर एक तीर अपने अपने टारगेट पे जाकर सही तरीके से लगे अपने हदफ पर, तो वो मुसीबा है। जो चीज़ मुझे आकर लगनी थी, जो तजुर्बा मुझे होना था, जिस चीज़ का मुझे सामना करना था, वो बिल्कुल सही टारगेट पर आई है, उसी ने आना था। और ये इसाबा अरबी में सिर्फ बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है। लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना, हमारे ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे खाते में लिखा है, हमारे खिलाफ नहीं लिखा। इल्ला मा कतब अल्लाहु अलैना, ला ला ला, इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना, हमारे लिए लिखा है। तो मुसीबत का लफ्ज उर्दू में हम बुरे कामों के लिए, जो बुरी चीज़ आपको आके लग जाए उसके लिए मुसीबत, अरबी में मुसीबा अच्छे और बुरे दोनों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर इन वला मन सबर व ज़कर व गफर इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, देखें आप फ़र्ज़ करें ये होता रहता है, ये लोग कुरान की कॉपी को जला रहे हैं या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, राइट, युरीदुना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, राइट, और फिर हमें आता है गुस्सा कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस पर मैंने बहुत अर्सा पहले एक लेक्चर भी दिया था कि हम जिस किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है और फिर किस तरह हम एक्चुअली जाने बगैर बग़ैर सही इल्म के हम उनका फ़ायदा करा देते हैं, क्योंकि उनकी उनका असल मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह अपने ऊपर अटेंशन लाएँ, और उनको अटेंशन बाकी तो कोई देता नहीं, कौन देता है उन्हें सारी अटेंशन, हम देते हैं, हम देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा जा रहा है, उनको शायर कहा जा रहा है, उन्हें कज़्ज़ाब कहा जा रहा है, और कुरान कहता है ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, जवाब में क्या करो, अरिद अनहुम, छोड़ दो उन्हें, तवल्ला अनहुम, पीठ दिखाओ उन्हें, बार बार कुरान ये कह रहा है ना। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन एक बात यहाँ पर जो समझने की इस मामले इस कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि कभी कभार सब्र का तकाजा ये होता है कि आप कोई रिएक्शन ना दें, या तो इसलिए कि उस रिएक्शन का टाइम नहीं है, या हो सकता है कि अभी रिएक्शन की आपके पास सलाहियत नहीं है। जो मक्के में सहाबा के साथ ज्यादतियाँ हो रही थीं, उस वक्त वो जवाबी कार्रवाई कर भी नहीं सकते थे, वला मन सबरा, तो वहाँ पर वस्बिर अला मा असाबक, लुकमान की आयत मक्के में आई है। लेकिन एक और सब्र का इम्तिहान है, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि जिसने आपके साथ ज्यादती की वो एक ज़माने में ताकतवर था और आप कमज़ोर थे, लेकिन एक ज़माना आता है कि अब वो कमज़ोर हो गया है और आप ताकतवर हो गए, और अब वो आपके सामने है। अब वो जब आपके सामने है तो वो जो पहले का खाता था वो अब बैलेंस करना है,

और फिर भी आपने फैसला किया कि आप अपने आप को रोके रखेंगे और आप माफ करेंगे, ये कोई छोटा काम है? ना, वला मन सबरा व गफारा, और जिसने सब्र किया और साथ ही माफ भी किया, ये तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम है। فإن ذلك لا من عزم الأمور, इन आयात का ताल्लुक असल में बदले से है, बदले की हिकमत और बदले को समझना कुरान में। وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ, किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो अपनी मदद करने के लिए जवाबी कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। बाइबल का एक मुहावरा है, शायद आपको मालूम होगा, टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल दिखा दो। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ से थप्पड़ मारे तो कहें ये ज्यादा लाल हो गया, इसको भी फिक्स कर दें, राइट, टर्न द अदर चीक। तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मुजम्मत होगी? नहीं। फउलाइका मा काना अलैहिम मिन सबील, आप उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा सकता जो जुल्म किए जाने के बाद जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्नमस सबीलु अलल लजीना यज़्लिमून अन्नास, केस तो उनके खिलाफ हो जो ज्यादती करते हैं, केस तो उनके खिलाफ हो। तो फिर तीन आपके पास पॉसिबिलिटी, तीन इम्कान आ गए। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ, तो तीन इख्तियार है मेरे पास। एक इख्तियार है, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं उसको चार मारूंगा। लाजमन नहीं कहा कि माफ करो, लेकिन अगर माफ करने की इतनी हिम्मत है कि माफ कर सकते हो तो उसका इनाम क्या है कि अल्लाह ताला माफ करेगा। और इन आयात पे जब कहा ना वला मन सबरा व गफरा फइन ذلك من عزم الأمور, इन्हीं आयात में कहा फमन अफा व असलहा فأجره على الله, जिसने माफ कर दिया और फिर रिश्ते को दोबारा सही बना दिया, इस्लाह कर ली। आम तौर पर कोई अच्छा काम करो तो अल्लाह अजर का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उसके गुनाह माफ होंगे, या कह देंगे उसको जन्नत मिलेंगी, उसको बाग मिलेंगे, उसको अगर हमें दरिया मिलेंगे, उसको जन्नत के फल मिलेंगे, किसी अजर का जिक्र है या किसी मगफिरत का जिक्र है। यहां पर इस एक माफ करने की के अमल को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है कि कहा है फअजरुहु अलल्लाह, उसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे, यानी बयान भी नहीं किया क्या अजर है। कुरान जो हर चीज को बयान करता है, अल्लाह ताला ने उस पूरे मुकम्मल परफेक्ट बयान में यह फैसला किया कि इसका अजर इतना अजीम है कि इंसानी जबान में इंसान उस अजर की अजमत को नहीं समझ सकेगा, तो उसके लिए ताबीर यही सही है कि उसका अजर अल्लाह के जिम्मे, फअजर हुआ अल्लाह। तो कभी कभार ये भी हमें ज़हनियत हमें तैयार करनी चाहिए अपने अंदर की, जो कुरान बात कर रहा है ना, कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान करके समझाते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान ना करने से भी समझाते हैं, वाज़े किए बगैर ज्यादा समझ में आ जाती है बात। टीचर का भी यही सिलसिला होता है ना, टीचर कभी कभी आपके सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब बाद में समझ आएगा। अगर अभी मैं इसका जवाब देना शुरू कर दूं तो ये वाला दर्स भी ख़राब हो जाएगा और अगले 6 लेक्चर भी ख़राब हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन हो जाएगी। तो आपका लिहाज करते हुए आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाना, होता ऐसा कि नहीं? जो सही टीचर होता है ना, वो गूगल नहीं होता, उसमें जो भी एंटर करो उसका वो जवाब देना शुरू कर देगा, वरना सारी तालीम ख़राब हो जाएगी। कभी कभी टीचर को कहना पड़ता है इसका जवाब अभी नहीं, इस बारे में मैं तफासिल नहीं दूंगा। तो कुरान आपकी हर बात का जवाब नहीं देता। और आजकल मैंने नोटिस किया है, जो जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं उससे पता चल जाता है ज़हनियत क्या है। तो लोग अब कहते हैं कुरान में ये क्यों नहीं है, कुरान में वो क्यों नहीं है, कुरान में इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं है, कुरान में उसकी, क्योंकि हमने कुरान को गूगल बना दिया ना, अब तो गूगल में तो मैं जो भी डालता हूँ उसका मुझे जवाब मिल जाता है। अब कुरान में मैं डाल रहा हूँ, मुझे उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है, उसका जिक्र क्यों नहीं है? कुरान तालीम है। अगर आप किसी क्लास में जाते हो, PhD प्रोग्राम में जाते हो, किसी आला तालीम में जाते हो, क्लास में बैठते हो, इतनी मुश्किलों से आपको उसमें दाखिला मिला है, इतना दुनिया का सबसे अजीम प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है कोई, और फिर आप कहो कि उसने आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई और रखा, इस टेक्स्ट बुक में तो मेरे फेवरेट खानों के बारे में भी कुछ नहीं है, वेकेशंस के बारे में भी कुछ नहीं है, जो चीज़ आपके जहन में वो उस किताब में होनी है। आप यहाँ सीखने आए हो या अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने आए हो? तो ये ज़हनियत हमें बदलनी होगी।

0: इतने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस स्पीकर, ये घूम फिर के जब मेरे पास, हम जब आपस में मिलते हैं तो सिर्फ यही क्यों दुखी परेशान और तकलीफ में होते हैं? मुझे तो कभी नहीं देखा इन्होंने दुखी तकलीफ में या परेशानी में, क्योंकि वो एक बात जो ये नहीं करना चाहते, ये नहीं मानना चाहते कि ये डिफरेंट है, ये दोबारा नॉर्मल हो गए, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और ये वो चाहते हैं जो ये चाहते हैं, और वो नहीं हो सकता, पैकेज डील में वो चीज़ है ही नहीं। तो ज़िंदगी वैसे बनाएं जैसे आप जी सकते हैं, जैसे आप खुश रह सकते हैं, और वो चीज़ें जो आपको नाखुश रखेंगी, थोड़ा सा वक्त रह गया, हम तो क्योंकि अभी यू नो 40 के बाद सारा काम बोनस पे, मैं तो गिनना, आपको पता है मैंने गिनना ही छोड़ दिए साल, क्या
1: फायदा।
0: आप लोग कहते हैं लेकिन आपको मेरे सुबह सुबह घोड़े गिट्टों की चिरिन चिरिन की आवाजें नहीं आती ना। मैंने रहना है अपने साथ, मुझे पता है मैं कितना जवान, ऊपर से ये ऊपर के देख दुख में ना जाए, अंदर से काम बहुत पुराना हो गया है। अब तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने उस दिन मुझे कहा जी आप बड़े हैंडसम आदमी, मैंने कहा आपने हमारी जवानी नहीं देखी, उसके सामने तो ये खंडन है। तो बड़ा हंसे, वो कहते हैं नहीं आपकी तरह तो फलाम बनना चाह रहा है मेरा बेटा, या फलाम बंदा बनना चाहता है, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा उसको नहीं पता फिर हमारी जवानी, तो हम ऐसे हंसते रहते हैं, क्या मतलब क्या जवानी होगी हमारी, क्या मतलब जवानी में, तो याद है आपको गांव में क्या कहते थे, जवानी में तो गधा भी खूबसूरत होता है। याद है पठानों में भी कहते हैं जवानी खुद खूबसूरती का नाम है, वो जवानी में तो कोई भी खूबसूरत होता है। तो इसीलिए सारी कार्रवाइयाँ बीच में से हम वैसे हंस खेल लिया करें, लोग जब प्यार मोहब्बत से कुछ कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ले लेना चाहिए हंस खेल के। आपने अपने अगले पिछले सारे अपने जो है ना वो गिले शिकवे दूर कर दिए लोगों से, ठीक है। चले आखिर में ना, आखिर में क्योंकि ये स्पेशल शो है तो कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं जंग से रिलेटेड और इन बातों को डिपेंड करता है, अगर किसी की कॉल आ गई तो उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता जिन चीज़ों के बारे में, और मीडिया के बारे में क्वेश्चन आया पड़े मेरे पास कि जंग से ही रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे थे आप हमारी को होस्ट डॉक्टर साहिबा को, बांका सजीला, एक बांका कितना सही फिट आया वैसे, एक बांका और दूसरा सजीला, दोनों साथ आपकी खिदमत में हमने एक घंटा की ये जो डिस्कशन पेश किए जी, उम्मीद करते हैं इससे कुछ ना कुछ आपको समझ आई हो, नहीं आई हो कोई बात नहीं, हम इधर ही रहते हैं और चीज़ें सारी रिकॉर्ड, जो सवाल पूछे गए हैं जी जंग से रिलेटेड और मामलात और हालात से रिलेटेड, तो इतना मैं क्योंकि ये लंबी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा किसी एक शो में इंशाल्लाह, जब ये इस पागलपन को थोड़ा सा ज़रा सेटल डाउन होने दे, मेरा ख्याल है क्योंकि आज वक्त कम है, आज हमारे मेहरबान आए हुए थे तो हमने उनसे बात कर ली ज़्यादा, और क्योंकि आप लोगों ने आकर वो बात छेड़ी भी नहीं तो इसीलिए हमने वो बात जाने दी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो पागलपन है, उसमें सिर्फ इतना ही आपको बताया जा सकता है कि 90% जितनी भी खबरें हैं वो सब झूठ हैं, ठीक, ये पहली निशानी होती है चीज़ों की, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बातें हो रही हैं, और ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं दोनों तरफ से, और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो कोई भी सैनिटी, कोई भी सेन एनवायरनमेंट के अंदर सैनिटी कहीं प्रवेल नहीं कर रही है। आप मीडिया अगर सुनेंगे देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और इतना झूठ है, इतना झूठ बोला जा रहा है, और वो सारे अगले दिन जब पता भी लग जाता है आजकल के ज़माने में ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका फ़ौरन फुटेज बन जाती है, चाहे वो सरहद की इस तरफ हो या उस तरफ हो, जिस चीज़ की कोई फुटेज नहीं है वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सो और जो सबूत है जिन तमाम चीज़ों का, वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मिल रहा है आपको, तो इसलिए अब ये और सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गए, अब गवर्नमेंट किसी भी किस्म की हो उसके झूठ पकड़ना बहुत ही आसान है, और लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहुत चीज़ों को फ्यूल किया जा रहा है। मैं किसी दिन आपको ना बैठ के थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ बातें बताऊँगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि एक्चुअली बबल, ये सारे का सारा एक बबल है, और इसके बीच में जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया है, और उसके अलावा इतने लोगों की जानें ले ली गई हैं, और उसकी कोई न वजह बनती है, न तुक बनती है, न कोई यू नो कोई सबूत है किसी बात का, लेकिन जिसने अपना अपना एजेंडा होता है, और वो एजेंडा कैसे पुश किया जाता है और कहाँ तक हमें यूज़ किया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, इसके बारे में फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। फरमाइश आई थी बड़े दिनों से कि जी आप अपनी नज़्म वगैरह कोई नहीं सुना रहे, तो हम आपको अपनी नज़्म एक सुना देते हैं। ये फिल्म मैंने की थी आइटम के नाम से, वो फिल्म क्योंकि जब आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ वो इसलिए करते हैं कि वो ना कर सकें, ठीक है, कोई भी काम, जिस वजह से मैंने ये फिल्म की थी, हमारे माशरे में औरत के साथ जो मुकाम है औरत का, जो कार्रवाइयों में बताया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड सड़क के ऊपर काम करने वाली जो लेडीज़ हैं उनके साथ क्या होता है, और हमने भी देखा है और लोग आज भी करते हैं, और वो करते करते वर्स्ट को पहुंच गया है, तो औरत को एक आइटम के तौर पे देखा जाता है। और आपकी इतला के लिए अजय, उसमें आइटम नंबर भी है, और कमाल बात यह जब हम उसकी डबिंग करने गए तो आइटम नंबर पर फिल्म खुल रही है। तो जो मैडम थी उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और उन्होंने कहा आज़ाद सोच रहे हो, खुद उन्होंने मुझे नहीं डायरेक्ट नहीं कहा, जो बंदा डबिंग करा रहा था उसको उन्होंने कहा आज़ाद सोचेंगे कि कैसी फिल्म बनाई है मैंने। तो मैं कह नहीं, जितना कर सकते हैं ठीक है, फिल्म के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और ये जो आपने डाला है ये हकीकत है, ये मैं खुद देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, चलता है ये सब। तो इस किस्म के उसमें ये नज़म भी थी, और फिर बाद में क्योंकि मेरा हाल एडिटिंग वगैरह में, और क्योंकि टाइम जब एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये नज़म उसमें से अब शायद ना हो, क्योंकि जब डबिंग हुई थी तो उसमें मैंने ये डबिंग नहीं की उसकी, तो इससे ये पता चलता है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक्टिंग नहीं है, वो डबिंग है। और डबिंग भी वो एक एक लाइन लाइन को मीटर में रखना, दो दो लफ्ज़ बोलना, सर्दी में जब आपके होंठ दांत बज रहे हों और होंठ जो हैं वो सख्त हुए हों, वहाँ पर डायलॉग बोलना, और उसके बाद कंफर्टिंग से डेस्क में बैठ के एनवायरनमेंट में वो सर्दी की एक्टिंग करना, ये वॉज सो डिफ़िकल्ट और अजीब अजाब। तो पुराने ज़माने के जितने लोग थे, अब तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए हैं, उसमें आप बहुत सारी लाइन्स नहीं करनी पड़ती और आराम से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दिस वॉज़ द वर्स्ट थिंग जो कि दो दिन मुसलसल हम करते रहे, और खैर चीज़ें तो हो ही गई, और उम्मीद करते हैं कि वो लिप सिंक वगैरह भी ठीक किया होगा। बट पहले 9 दिन, पता है 8 से 9 घंटे खड़ा रहा मैं और करता रहा चीज़ों को, तो फिर अगले दिन मैंने कहा हेलो भाई ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ द गेम, इसको ऐसे करें और मैं इसको ऐसे करके फिर करके दिखाता हूँ आपको। तो फिर अगले दिन 3-4 घंटे में काम हो गया, जो पहले 8-9 दिन तकरीबन 20% भी नहीं हुआ था। तो आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, आपको अपनी वीकनेस का भी पता होता है, अपनी एक आध स्ट्रेंथ का भी पता होता है, और फिर आप पूरा 8-9 दिन, फिर आपको बड़ा बुरा फीलिंग भी होती है कि यार ये मतलब ये क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप कहते हैं एक मिनट ठहर, सोचते हैं आप पीछे हट के कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। और अगले दिन फिर मिरेकल हो गया कि हो गया वो। अब वो कैसा हुआ है, जब मैं स्क्रीन पे वैसे देख रहा था तो मुझे सब कुछ ही बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फुटेज भी और थी, अब इसमें म्यूज़िक नहीं था, ग्रेडिंग नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर मैंने पहले मेरे दिल में आया कि वह की कर बैठा मैं, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे इंजॉय करते हुए आपको साथ साथ दिल के डर बताते रहते हैं अपने बारे में, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत लोग बताते हैं, सच्ची सच्ची नहीं बताते, तो सच्ची सच्ची से पता चलता है, सच्ची सच्ची से फिर आगे चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं किसी ने बताया, और सैकड़ों साल गुजर गए। चलें शुरू करते हैं यहीं से ही। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगला हफ्ता हम कुछ चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जी हम, तो फोकस की सीरीज़ हमको चाहिए, हम भी सुने आप भी सुने। उम्मीद करते हैं आप ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस करना है ये भी हम उसमें से सीखेंगे, फोकस करना कैसे है, फोकस होता क्या है, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है हमें नहीं पता चलता, तो हम उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे कि क्या है जी जो जिसकी पर्दादारी और फोकस ही नहीं हो पा रहा हमसे, तो हम भी फिगर आउट करेंगे उसको। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, जब वापस आएंगे तो फिर अगर ये पागलपन थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, अभी सिर्फ आपको इतना बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पागलपन सेटल होने से पहले ज़रा उछलेगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, तो फिर देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे डिटेल में उनके बारे में पूरी एनालिसिस करके आपको देंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि जहनों में थोड़ा सा सोचने समझने की आसानी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इल्म हासिल किए बगैर आसानी हो नहीं सकती, रियलिटी जाने बगैर हकीकत पसंद होना, अपनी एक्सपीरियंस उसको सामने रख के अपने दिमाग और दिल को इस्तेमाल किए बगैर अगर आप आसानी चाहते हैं तो फिर मरने मुरने की तैयारी करें, उसके अलावा और कोई आसानी नहीं है। वो भी काफ़ी मुश्किल काम है, वो भी कोई नहीं करता, सिर्फ कहते रहते हैं लोग, ठीक है। खुश रहें, इंजॉय करें, और ये कुछ सुनाते हैं, कुछ बोल हैं, काश हम भी हों ऐसे, काश आप भी हो सकें ऐसे। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: ज़रूर सुने। क्लेम करने के लिए पैसे मत दें। कुछ कंपनीज बेनिफिट्स क्लेम करने में मदद करती हैं, लेकिन इस मदद के लिए वो आपसे काफ़ी पैसे ले सकती हैं। आप ये काम खुद बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट एज या सिटीजन एडवाइस जैसी भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन से भी मदद ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। याद रखें, जो बेनिफिट आपका हक है उसका क्लेम करना हमेशा मुफ्त होता है, इसलिए क्लेम करने के लिए पैसे मत दें। मुफ्त मदद के लिए gov.uk/dwp/freeclaimsupport पर जाएं।
1: This is Inspire FM with you 24 hours a day for the last 25 years. Online, on the Inspire FM app and 105.1 FM.

क्यों कहा? क्योंकि जन्नत के भी दर्जे हैं। किसमें? कोई जन्नतुल फिरदौस है, और ये कौन सी जन्नत है? सबसे आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब तुम अपने लिए जन्नत मांगो तो कौन सी मांगो? आला तरीन मांगो। क्योंकि जब इंसान आला तरीन चीज मांगेगा, तलब रखेगा, तो फिर कोशिश भी ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो शायद किसी दर्जे पर फिर पहुंच ही जाए। तो अच्छी ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं, फिर उसको मांगना भी चाहिए। जन्नत बाग है, जन्नत अदन है, जन्नत अलखुल्द है, जन्नत अलमावा है। सूरत अर्रहमान में जन्नतान का लफ्ज़ आता है, तो यहाँ पे कि कई किस्म की जन्नतें, जन्नत नईम भी आता है। तजरी, जराय अजरी का मतलब होता है जारी होना, बहना, बहती हैं। मिन तहतहा, उसके नीचे से, यानी जन्नत के नीचे से, यानी उन दरख्तों के नीचे से क्या बहती हैं? अल अनहार, नहरें, नहर की जमा, नहर, नहरें। और कुरान मजीद से हमें चार तरह की नहरों का जिक्र मिलता है। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15 में आता है, फीहा अनहारुन मिम्मा इन गैर आसिन, उसमें नहरें हैं ऐसे पानी की जिसका जायका नहीं बदलता। व अनहारुन मिन लबनिन, नहरें हैं दूध की, लम यतगैर तामु, जिसका जायका तब्दील नहीं होता। घर में तो आप दो दिन ला के रखे तो तीसरे दिन दूध ख़राब ना भी तो जायका बदल जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन वहाँ ख़ास तौर पर जो दूध की नहर है उसका जायका नहीं बदलेगा। और फिर वह अनहारुन मिन असलिन मुसफ़ा, साफ शहद की, शफाफ शहद की। वह अनहारुन मिन खमरिन, और शराब की नहरें, लज़्ज़त लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए लज्जत का बायस, जायका ख़राब नहीं। तो सिर्फ पानी की नहरें नहीं हैं, पानी की भी जो है वो भी इतना साफ शफाफ है कि जिसका जायका नहीं बदलेगा, जो सड़ेगा नहीं। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कुल्लमा, कुल्लमा जो है हर्फ शर्त है, जब भी, रुज़िकु, वो रिस्क दिए जाएंगे। रुज़िकु का लफ्ज जो है रे ज़े क़ाफ़ से, रिस्क, मिनहा उसमें से, किस में से? जन्नत में से, यानी जन्नतियों का रिस्क जन्नत ही का होगा, कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। मिन समरतिन, फलों में से, फ्रूट्स में से, रिस्कन, कोई भी रिस्क। और ये जो रुज़िकु रिस्कन आया है, तो ये जो रिस्क है दोबारा आना, ये भी अहतमाम के लिए आया, यानी जैसे रिस्क दिया जाना चाहिए अहतमाम के साथ, यानी ताकीद के लिए आया एक तरह से, वरना इससे भी माना पूरा हो जाता, कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिन, लेकिन दोबारा रिस्कन क्या कहा? वाकई जो रिस्क है, कालू, वो कहेंगे, हाजा, ये, पहले आपने जालिका पढ़ा, क्या माना था? वो, और हाजा ये अल्लज़ी, वो है जो, रुज़िक़ना, रिस्क दिए गए हम, ये तो वो रिस्क है जो हमें रिस्क दिया गया था, मिन कबलु, इससे पहले, किससे पहले? इस जन्नत से पहले भी हमको ये मिला था, जी हाँ, दुनिया में। व उतू, और वो दिए जाएंगे, भी ही साथ उसके, फ़ातू भी का क्या माना था? लाओ उसको, यानी वो लाए जाएंगे, यानी उन्हें खुद जाके नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि लाए जाएंगे उसको, दिए जाएंगे वो। मुतशाबिहा, मिलते जुलते। मुतशाबिहा का जो रूट है वो है शीन बे हे। शबीह का लफ्ज़ सुना कभी? ये उसकी शबीह है, मिसाल है, यानी रंग शक्ल में मुमासलत, एक दूसरे जैसे। वलहुम, और उनके लिए, किन के लिए? जन्नत वालों के लिए। फीहा, उसमें, यानी उस जन्नत में। अजवाजुन, जौज की जमा है, जौज कहते हैं स्पाउस को, सिर्फ बीवी के लिए नहीं, शौहर के लिए भी आता है। जब सिर्फ बीवी के लिए लाना हो तो फिर जौजतुन आता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है जौज। तो इसका रूट है जाय वाव जीम, जौज। जौज का माना था मिलाना, तो अरबी में शादी के लिए जवाज का लफ्ज आता है, जवाज कहते हैं शादी को, क्योंकि शादी में भी दो लोग मिलते हैं, दो खानदान मिलते हैं, तो अजवाज स्पाउसेस, पार्टनर्स। मुतहरतुन, पाकीजा, प्योरिफाइड। मुतहर रूट क्या है? ताहरा।